लग जा गले ए लग जा गले दुनिया जले छम छम छम छम छम छम ए गण हम पे दिल निसार करता है।

हम सब चोर है, दिग्दर्शक आईएस जोहर, शम्मी कपूर, नलिनी जयवंत, राजेंद्रनाथ प्राण व महमूद, संगीतकार ओपी नय्यर, यातलं हे गाणं ओ मिस्टर बँजो इशारो में समझो।

आइए, अरे आइए ना, तशरीफ लाइए। कमाल है, पहली बार आए हैं हमारे घर आप। अजी पहली बार आपसे हुआ है मिलाप। कहिए कहिए ना, कहिए कहिए कहिए।

खुदा की तरह अकेले। आओ आओ ना, क्यों घबराते हो? क्या हमसे कोई खता हो गई? कुछ नाराज नजर आते हो?

करने की फुर्सत मिली बहुत दिनों के बाद, पर बड़ी उम्र है आपकी, अभी किया था याद।

हम सब चोर है, दिग्दर्शक आईएस जोहर, शम्मी कपूर, नलिनी जयवंत, राजेंद्रनाथ प्राण वो महमूद, संगीतकार ओपी नय्यर, यातलं हे गाणं ओ मिस्टर बँजो इशारो में समझो।

0: कान को बंद कर दिया।
1: दिल धड़क रहा है, जरा ठहर जाइए।
0: लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहता।
1: मुझे भी जाने की जल्दी है अमर बाबू।

0: यहां का काम तो शायद खत्म हो गया है।
1: अच्छा ही हुआ जो काम करते रहे, मैं संभल गई। अब आपसे माफी मांग लूं?
0: मुझसे?
1: हाँ, आज मेरी वजह से आपका अपमान हुआ।
0: तो क्या हुआ? तुम्हारे भले बुरे के जो जिम्मेदार है, क्या उन्हें इतना भी अधिकार नहीं कि तुम्हारी खातिर?
1: समझे, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं।
0: नहीं, मैं तो जिंदगी से दूर भाग रहा था, एक ऐसे रास्ते पर से जहां आराम था ना किसी पेड़ का छाया, धूल ही धूल थी अपनी नाकामियों की, जिसमें मैं अपने आप को खो बैठा था। इतने में तूने मुझे आवाज दी, मैं रुक गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं भी जिंदा हूं।
1: दीपक,
0: क्यों आवाज दी तुमने मुझे? क्यों याद दिलाई ये सब कुछ?

0: कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता छाया, कुछ नहीं हो सकता। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता जिसे लड़ने से पहले ही आदमी हार जाता है। मैं हार गया हूं छाया।
1: सुदीप।
0: हाँ छाया, लगता है यहां तो सिर्फ दूसरों के सर पे पांव रख के ही आदमी ऊपर चढ़ सकता है। सीधा रास्ता तो सिर्फ वहां जाता है जहां गुहा चला गया। इस शहर के लोग रोने के लिए कंधा नहीं देते, मरने तक इंतजार करते हैं कंधा देने के लिए।
1: मैं तुम्हारे साथ हूं सुदीप, तुम्हारे साथ छोटी सी खोली में भी अपना घर बसा लूंगी।
0: झूठे आदर्श की बात मत करो, चिढ़ होती है मुझे। घर बना लोगी, कपड़े के लीर का दिया जलाओगी और शाम को आधी सूखी रोटी खिलाकर सोचोगी कि हम लोगों ने घर बना लिया। हाथों में पेट लिए घूमोगे तुम और मैं पेट पे हाथ रखे घूमूंगा। इसे घर कहती हो तुम? नहीं छाया, बहुत देखा है ऐसे पीले चेहरों वाला आदर्श।
1: तुम निराश होगे सुदीप, मुझे विश्वास है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
0: हाँ, विश्वास, विश्वास, तुम्हें विश्वास है ना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा? है, एक रास्ता है। हाँ छाया, मैंने भी अपनी सीढ़ी चुन ली। मोदी,
1: मोदी
0: तुमसे शादी करना चाहता है ना, कर लो शादी। समझने की कोशिश करो छाया, कितने दिन जिएगा और कितने दिन जी सकता है। हाँ छाया, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ इसके बाद ही हम लोग अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं।
1: छे, किसी की कब्र पे अपना घर बनाऊंगी।

0: नाराज हो जाएंगे। और गाइए।
1: हाँ गाओ।
2: नहीं मैं और नहीं गा सकती।
1: गाओ।
0: आपको गाना पड़ेगा।
2: मैं